के जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणी ग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं है। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे। इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जी के चरण निवास, प्यारी जी के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वपु धरयो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार उसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं, उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची
गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग ना चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुद छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे हैं, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे, बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन, वचन आधीन सदा रहे, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लालजू महाराज
हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन अधीन सदा रहे। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन अधीन सदा रहे। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्मानुश्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही,
ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप। सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों

कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में है, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावला है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाए। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए। हा लैला जलेबी, अब जितनी दुकान वाले हैं और सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके। बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे। कह दो अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, वो पर्दा करके सामने आए और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू,

0: कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंजिल। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो, अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेरण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया, ऐसे चोच कर ली। मानो किसी पक्षी ने पूछा आप तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ है।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

हे परम पूज्य बृहस्पति देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा कल्याण करें। बीज मंत्र।

हे विद्यापति बृहस्पति देव, हम आपके बीज मंत्र का जाप करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें।

0: When you face failures, don't change your goal, change your strategy. You are listening to the thoughts of Mr. Vivek Bindra, who is a motivational speaker and a corporate trainer.
1: आप सबका स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच. आज बात करूंगा माइंड कंट्रोल और इमोशन कंट्रोल की. काफी लोग बात करते हैं मूड की, कॉन्फिडेंस की, माइंड की, इमोशन की, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए. ये वीडियो भगवद गीता के पे आधारित एक शक्तिशाली टूल और फ्रेमवर्क के साथ उसको लेने के लिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए. कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर. पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. कृष्ण क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन. यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस. राइट, सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था. डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. सबसे पहला रूल क्या है, ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी. तो आप कर क्या सकते हो, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो. कम ऑन, क्या कर सकते हो, रिप्लेस. जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित. ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं. पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट. एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था. अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आच्छादित संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया उसी चेतना में रहकर आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो पहला रूल क्या है, अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा. कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा. अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की, माइंड कंट्रोल करें कैसे. अर्जुन क्या कहते हैं, मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान. तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते. कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास से न तो कौनते या वैराग्य न चगरी हते. अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला. तो बोला फिर करना क्या है, अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है. तो कृष्ण ने क्या कहा, कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य. आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य. अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना. अभी ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए. आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है. उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी है, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस है. देर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशंस. आपके पास मेमोरीज है आपके स्टोर हाउस के अंदर, माइंड में मेमोरीज है. उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था. अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते. पूरा वीडियो देखिए, रुके अभी साथ में, मेरे साथ ही रहिए. अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है. याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था. उस दिन आपके आसपास क्या हो रहा था, उस मेमोरी बैंक से उसको ढूंढ के निकालिए, ढूंढिए उस मोस्ट प्रोडक्टिव जो एक्सपीरियंस था आपके जीवन का, जो बहुत उस दिन आप बहुत खुश थे, आपने उस दिन बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, याद करिए अब तीन चीजें, मैं तीन प्रश्न दे रहा हूं। सी वॉट यू सॉ, फील वॉट यू फेल्ट, हियर वॉट यू हर्ड। देखिए सी वॉट यू सॉ, पहला चीज, उस दिन आपके आसपास कौन था उस सबको देखिए। दूसरा, हियर वॉट यू हर्ड, लोग आपके बारे में उस दिन क्या बात कर रहे थे उसको याद करिए। उसके बाद फील वॉट यू फेल्ट, उस समय आपके मन में क्या इमोशंस थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा फील कर रहे थे उस दिन। उन इन तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए, यानी कि दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, वो इंसिडेंट जो मोस्ट प्रोडक्टिव इंसिडेंट था आपकी लाइफ का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा, तीन प्रश्न लीजिए अपने आप से, करिए सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास, कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये तीन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे, उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए। एफएम चैनल एक समय में, एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से, डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और, बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन, डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए, सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए, जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा, अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ गया। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे टूल्स को ध्यान से देखते रहिए, मैं आपके लिए कई ऐसे टूल्स डालने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार्स की तैयारी भी कर रहा हूं। 15 अप्रैल को मेरा पहला फ्री बड़ा सेमिनार स्टेडियम में होने वाला, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उसके बाद आपके शहरों तक पहुंचूंगा। देखिए मैं मुख्य तौर पर तीन बातें बताई। पहला स्टेप है चूज योर मेमोरी, सो योर चॉइस ऑफ मेमोरी विल डेवलप। सेकंड स्टेप, अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, उस मेमोरी में क्या कॉन्शियसनेस थी। सेकंड स्टेप, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस अभी मिल जाएगा आपको, आपको चॉइस ऑफ मेमोरी, उससे क्या आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, इसको बोलेंगे इट विल डिटर्मिन हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। हाँ, तो पहले मेमोरी ढूंढिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस बदलेगा, हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। इमेजिन करिए अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए, तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, 10x, यू कैन ग्रो 10 times बेटर। इमेजिन करिए अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी। एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को खींच के लाना चाहिए। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें, एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है। राइट, यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट, महसूस जो इमोशन, जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है, आप कर सकते हैं। आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे, आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे। वो न्यूरो पाथवे जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे, उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर देंगे।

आरजे अंजलि गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 43 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 30 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 18 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलेगी 20% और डे रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी धूप निकलने वाली है और गर्मी भी बहुत होने वाली है। तो इस गर्मी भरे मौसम में खुद का ख्याल रखना जरूरी है, तो अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, साथ ही अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

अगर बात अपने इंडिया की हो ना, तो इंडिया में दो चीजें कभी मना नहीं हो सकती, पहली है चाय और दूसरी है गॉसिप। वेलकम बैक टू रेडियो मायानी, मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे। और ऑनेस्टली चाय लवर्स के लिए तो ये एक फेस्टिवल से कम नहीं होने वाला भाई, उनके लिए सिर्फ चाय ही है जिससे उन्हें सुकून आता है। और अगर दिन की बात करूँ ना, तो ये दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुबह की नींद खोलनी हो, चाय। ऑफिस स्ट्रेस कम करना हो, चाय। बारिश एंजॉय करनी हो, चाय। हार्ट ब्रेक को डिस्कस करना हो, फिर भी चाय। यानी हर सिचुएशन का एक ही परमानेंट सोल्यूशन है, वो है चाय। तो भाई जब गेस्ट घर पर आते हैं तो क्या बोला जाता है कि एक कप चाय बना दो। कहीं हम किसी के घर पर जाते हैं तो क्या होता है, चलो एक कप चाय हो ही जाए। और खासकर चाय पर चर्चा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया दुनिया के बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर में से एक है। सो यहाँ कटिंग चाय से लेकर मसाला चाय, हर सिप में इमोशन मिलता है। जिम पार्टनर मिले ना मिले, लेकिन चाय पार्टनर ऑलमोस्ट सबके पास होता है। सो भाई अब बात कर रहे हैं चाय की, तो चाय की कुछ मिनी फैक्ट्स जान लेते हैं। टी दुनिया का सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज में से एक आता है। एंड सेकेंडली, डिफरेंट कल्चर्स में से चाय का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो आज एक एक्स्ट्रा कप चाय हो ही जाए। और अगर आज कोई चाय पीने के नुकसान बताए ना, तो उन्हें फायदे भी बता देना। और इसके साथ ही एंजॉय कीजिए आज का शो मॉर्निंग एक्सप्रेस, गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसे एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है?
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अक्सर बोला जाता है कि थोड़ी बहुत धूप जरूरी है क्योंकि विटामिन डी आपको धूप से मिलता है। लेकिन आपको पता है सनशाइन एंजॉय करने के साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना। यानी कि स्किन का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज एक इंटरेस्टिंग मंथ। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आपको पता है जो मई मंथ होता है ये अपने आप में अवेयरनेस का मंथ होता है, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए स्किन कैंसर अवेयरनेस मंथ, जो स्किन हेल्दी और सन सेफ्टी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। और अगर बात करें अवेयरनेस की तो आखिर जरूरी क्यों है? एक्सेसिव सन एक्सपोजर और यूवी रेज स्किन को डैमेज कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है, इसलिए कहा जाता है प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सेफ्टी टिप्स मैं आज लेकर आ गई हूं। सबसे पहले घर से बाहर निकलने से पहले, या फिर आप घर में भी रहते हैं तब भी सनस्क्रीन यूज जरूर करें। इसके साथ ही जब भी आपको लगता है ना कि आपको घर से बाहर जाना है और पीक आफ्टरनून है तो सनलाइट को अवॉइड जरूर करें, सनग्लासेस और कैप जरूर पहने, स्किन चेंज को इग्नोर कभी ना करें, जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज ग्लो इम्पोर्टेंट है पर हेल्दी ग्लो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हेल्दी स्किन के लिए थोड़ी अवेयरनेस और केयर बहुत जरूरी है। सो माय डियर लिसनर्स, आप अपनी डाइट का ख्याल तो रखते ही है ना, लेकिन आज से आप सनस्क्रीन अप्लाई भी करेंगे, प्रॉमिस कीजिए फटाफट। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा, सुन।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ क्या कर रहा है? बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अगर बात की जाए फोटोज की यानी कि पिक्चर्स की, तो पिक्चर्स सिर्फ मोमेंट्स कैप्चर नहीं करती, हमारी फीलिंग्स को भी सेव कर लेती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई अगर मई मंथ की बात करें तो बहुत ही कमाल का मंथ है, क्योंकि इस मंथ सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फोटोग्राफी मंथ, यानी कि एक मंथ डेडिकेटेड टू क्रिएटिविटी, मेमोरीज एंड फोटोग्राफी लवर्स के नाम। आजकल ना हर किसी के फोन में कैमराज है, हर मेमोरी एक परफेक्ट एंगल से क्लिक की जाती है, सो दैट कि वो आपके पास थोड़ी सी एस्थेटिक बनकर आए। और अगर फोटोग्राफी की बात करें तो एक मैजिक है इसमें, स्पेशल मोमेंट्स को फॉरएवर बना देती है। और साथ ही अगर इन फोटोज की बात करूं तो ये अपने आप में कहानियां लेकर आती है जिनमें शब्द नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर होती है। और अगर बात की जाए फोटोग्राफी की तो क्रिएटिविटी और पर्सपेक्टिव का शो है। सो चाहे सनसेट हो, चाय की फोटो हो या रैंडम कैंडिड क्लिक्स, हर पिक्चर की अपनी स्टोरी होती है। और कहते हैं ना आर्ट, आर्ट को निहारने वाला आर्टिस्ट ही होता है। और एक फोटोग्राफर को बहुत अच्छे से पता होता है कि किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके परफेक्ट फोटो बनानी है। सो पहले लोग यादें दिल में रखते थे लेकिन अब गैलरी में रखते हैं, बस इतना सा फर्क है। सो आज एक ऐसी फोटो जरूर क्लिक करिए जो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं मीनिंगफुल भी हो। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आजकल ना हम हर चीज में कन्वीनियंस ढूंढते हैं और फिर कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी प्राइवेसी को गवा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कन्वीनियंस के साथ प्राइवेसी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो यहाँ पर ना साइबर क्राइम का एक और रीसेंट इंसिडेंट मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। एक रीसेंट इंसिडेंट में एक वुमेन ने एलिगेशन लगाया कि रेस्टोरेंट के QR बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में दिए गए पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज हुआ है। सो अगर बात की जाए ना आखिर ये स्कैम कैसे हुआ और ये स्कैम का पार्ट कैसे है। सो यहाँ पर स्कैम कुछ इस तरह से हुआ, जब इस वुमेन ने फूड ऑर्डर करने के लिए उस रेस्टोरेंट का QR स्कैन किया, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करी और उसके बाद में पता चला इन्हें कि रेस्टोरेंट के एक स्टाफ ने उनकी डिटेल्स को यूज कर लिया है, व्हाट्सएप पर पर्सनल कॉन्टेक्ट किया, बातें करने लगा और यहाँ तक ये तक बताया कि उस लेडी के बारे में क्या क्या उस इंसान को पता है। सो अब आप देखें कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी पर्सनल है। तो यहाँ पर ना एक कंसर्न ये रेज हुआ कि कस्टमर डेटा प्राइवेसी का क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो रही है, डिजिटल सेफ्टी और ट्रस्ट इश्यूज इंक्रीज हो रहा है। सो माय डियर लिसनर्स, स्मार्ट तरीके से क्या करें। सो माय डियर लिसनर्स, आपके लिए आज एक मैं रिमाइंडर लेकर आया हूं। रिमाइंडर ये है

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
4: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अगर बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड की होना तो भाई यहाँ पर नेगोशिएशन करना बहुत टफ होता है, लेकिन अपनी इंडियन मॉम्स सुपर मॉमी तो भाई इनके सामने तो एचआर भी वीक पड़ गया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस पे मैं लेकर आ गई हूँ आज का सोशल स्यापा। सो स्यापा ये है कि अप्रेजल मीटिंग में हो गई सुपर मॉमी की एंट्री, यानी कि सोशल मीडिया पे ना इन दिनों एक फनी सटायर वायरल हो रहा है जिसमें गुरुग्राम के एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी अप्रेजल मीटिंग में अपनी मम्मी को बुलाया। सो भाई मम्मी ने यहाँ पर ऐसी नेगोशिएशन की ना कि सैलरी हाइक के साथ साथ ना प्रमोशन भी मिल रही है। तो भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर और वायरल स्टोरी का हाईलाइट सामने आया और हाईलाइट ये है, मेरा बेटा डेडलाइन की वजह से खाना नहीं खाता आपको पता है और आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। एचआर पॉलिसीज वर्सेस इंडियन मॉम इमोशंस बहुत जोरों पर थे इस वीडियो के अंदर नजर आए। अप्रेजल मीटिंग बन गई सब्जी मंडी स्टाइल बार्गेनिंग। सो भाई यही होता है। तो भाई जितने भी आज मुझे ऑफिस वाले सुन रहे हैं, जितने भी मुझे बॉस सुन रहे हैं ना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा तो उसे दीजिए ना, जो मेहनत आपको नहीं दिखती ना वो घर पे मम्मी को दिख जाती है। सो ये स्टोरी कम्प्लीटली सटाया है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए। सो अगर इंडियन मॉम्स की बात करूँ ना तो वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो कॉर्पोरेट डील्स भी क्लोज कर सकती हैं और ऑनेस्टली भाई सुपर मॉमीज का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस भी आपको दुखी कर रहा है ना तो आज अपनी मम्मी को लेकर जाइए ऑफिस में और बस बात करा दीजिए मम्मी से कि सैलरी हाइक भी हो जाएगी और आपके बॉस को थोड़ा सा आपसे डर भी लग जाएगा। वेल सो इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया एक म्यूजिक ब्रेक लेने का, तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महाराज में मॉर्निंग एक्सप्रेस शो। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया, और स्कैम ये है शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से। बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपीके फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपीके फाइल। तो आखिर ये एपीके फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपीके फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए एप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है, उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहते हो, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहां से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन योर रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
5: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है और दिन भर की बात की जाए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचता नजर आता है, जो कि यहाँ हीट वेव्स चल रही हैं और कहा जा रहा है अब नौ तपा की शुरुआत भी होने जा रही है। मौसम विभाग का ऐसा अलर्ट है, तो यही कहूँगा, देखिए डॉक्टर्स की सलाह है, मौसम विभाग की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और जहाँ इमरजेंसी है तो फेस कवर करके जाएं, पानी बॉटल साथ में रखें और थोड़े टाइट कपड़े इस मौसम में पहनना बंद करें, थोड़ा नॉर्मल कपड़े होंगे जो बॉडी को ना परेशान करें, थोड़ी थोड़ी देर पानी पीते रहें और इमरजेंसी ना हो तो स्पेशली बच्चों को और बुजुर्गों को तो इस मौसम में बाहर ना जाने दें, उनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। वहीं साथ ही साथ आपको एक बात और कहूँगा कि अगर बात करें मौसम से बचने के लिए यानी कि गर्मी से थोड़ा सा बचने के लिए कि हेल्थ पे हमें क्या क्या ध्यान देना है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, साथ ही साथ फ्रूट्स हैं आजकल के, वाटरमेलन पपाया, इन फ्रूट्स को ज़्यादा सेवन करें ताकि बॉडी में अच्छे से एनर्जी बरकरार रहे, फास्ट फूड कम से कम खाएं, बच्चों को भी सलाह है और साथ ही साथ बड़ों को भी। बात करें AQI की मौसम के साथ ही साथ, देखिए AQI ने भी शहर को कहीं ना कहीं शहरवासियों को परेशान किया हुआ है, जहाँ बच्चों और सीनियर सिटीजन को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर निकल के सांस लेने में, तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कारपूल का ऑप्शन अपनाएं, कारपूल करने के या फिर अगर कह लें मेट्रो यूज़ करें, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे कि पेट्रोल की खपत भी बचाई जा सके और बाहर हवा को भी साफ़ सुथरा बनाया जा सके। बाग पार्क गार्डन सोसाइटीज़ में वाटर फॉगिंग हम अपने लेवल्स पे कर सकते हैं, जिससे कि शहर की हवा साफ़ सुथरी हो और सांस लेने लायक बने। बाकी ऐसे भी चर्चा करता हूँ, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ हम लोग बात करते हैं, देखिए हमें ऑफिस जाने के लिए कई बार ऑटो टैक्सीज या फिर शेयरिंग कैब्स का सहारा लेना पड़ता है और हम लोग जाते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं 21 तारीख यानी कि आज से लेके 23 मई तक ऑटो टैक्सी शेयरिंग कैब्स या अदर कैब्स जो ड्राइवर्स हैं वो काम पर नहीं रहने वाले। किराया बढ़ाने को लेकर के वो लोग अभी 3 दिन अपना काम बंद रखने वाले हैं। इसी बात को लेकर के मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कहीं भी अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा पहले आप लोग शेयरिंग कैब्स या कैब्स देख सकते हैं, शायद अवेलेबिलिटी मिल भी जाए और शायद ना भी मिले, आपको पहुँचने में देरी ना हो, इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। 3 दिन तक इन दिनों लगभग ड्राइवर्स अपने काम पर नहीं रहने वाले हैं। हालांकि शेयरिंग कैब्स आप लोग यूज़ करते हैं, अच्छी बात है कि जिससे कि कारपूल का ऑप्शन भी है और पेट्रोल की बचत भी बचाई जा रही है। लेकिन जहां अभी 3 दिन बिल्कुल भी अगर ड्राइवर्स ना मिले या बहुत कम से कम ड्राइवर्स या कैब्स अवेलेबल होंगी तो दिक्कत तो होगी आने जाने में, इसलिए पहले से प्लान रखें। चाहे आप लोग मेट्रो से जाएँ या अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप लोग जा सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी पहुँचने में देरी ना हो। बाकी ऐसी अभी चर्चाएँ तो चलती रहेंगी, लेकिन हाँ कारपूल करना और तेल की बचत करना भी हमारा फर्ज है, जैसे कि पहले भी अपील की गई थी, तो यही बात मैं आपसे फिर से कहूँगा ताकि हम लोग, जिससे कि देखिए काफ़ी बातें हैं कि एक तो ट्रैफिक कम होगा, कारपूल का ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की बचत होगी और साथ ही साथ हवा भी साफ सुथरी करने में हमारा योगदान रहेगा। बाकी ऐसे भी चर्चा करते हैं, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: 89.6 FM। कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।
3: कहते हैं सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इसी मूल पर भाटिया सेवक समाज पिछले 65 वर्षों से लाखों फरीदाबाद वासियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। NIT2 स्थित भाटिया सेवक समाज में आई हॉस्पिटल, डेंटल, फिजियोथेरेपी, गायनोकोलॉजिस्ट जैसी क्लिनिकल सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। यही नहीं, भाटिया सेवक समाज पूरे फरीदाबाद को अफोर्डेबल दामों पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी देता है। इस संस्था का मिशन है कि आने वाले वक्त में फरीदाबाद वासियों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी मुहैया करवाएं, ताकि बीमारियों का इलाज सब तक आसानी से पहुंच पाए। वहां बन रहे हॉस्पिटल में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी दी गई छोटी सी सहयोग राशि भी लाखों लोगों के लिए बन रहे हॉस्पिटल में बड़ी मदद होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सुधीर भाटिया 9312306685।
4: क्या आप मिस पंजाबन बनना चाहती हैं? तो सॉरी जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो महारानी के पास तो अपनी मिस पंजाबन पहले से ही है। जिसका अंदाज है पटोला और जिसकी म्यूजिक चॉइस है बीट्स ऑफ भंगड़ा।
5: तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो।
4: और अगर आपको भी उनकी बायो जाननी है तो सुनिए खिड़िया रंग पंजाब दा। यहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की हर अपडेट इन पंजाबी एक्सेंट।
5: पूछ देने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया।
4: So keep listening to RJ Sukhdeep Monday to Friday only on Radio Maharani 89.6 FM.

जिंदगी विच समझौते करने भी सीखने चाहिए ने। जेकर दरवाजा छोटा है तां उस नूं तोड़न दी बजाय झुक के लंघना भी सीखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे सुखदीप फ्रॉम रेडियो महारानी और इहो जी प्यारियां प्यारियां सीखण वालियां चीजां दे नाल शुरुआत होई है अज साडे शो दी। सुखड़ा रंग पंजाब दा हो चुका है शुरू और तुसी सारे सुन रहे हो रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। वैसे इंसान गलतियां दा पुतला है, ऐसा ज्यादातर आख्या जांदा है और ऐसा सच है। कभी भी कोई भी गलती हो जाए ना, बस यही डायलॉग असी सब नू कह दिंदे आ, इंसान ते गलतियां दा पुतला है। जेकर असी गलतियां ही नहीं करांगे फिर ते सानू लोकी रब कहण लग जाणगे, ओह पॉसिबल ही नहीं हो सकदा। ते इसे करके गलतियां करी जाओ और ऐ डायलॉग अगे रखी जाओ, लेकिन अगर असी इदां हमेशा हर बार एक्सक्यूजेस दिंदे रहे ना ते फिर कुछ सीख नहीं पावांगे। जदों गलतियां हुंदियां तुहानू कोई तुहाडे सामने वाला दस रहा है कि तुसी इत्थे गलत हो या तुसी मिस्टेक कर चुके हो, तो फिर उन्नू सुधारो। तो सीरियसली उन्नू सुधारना चाहिए है, क्योंकि गलतियां तो असी बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ एक एक्सक्यूज ना दईए सारे नू कि गलती हो गई हो तो होंदी है यार फिर की है, लेकिन नहीं, गलती हुई है तो बस अपने आप में प्रोमिस कर दें कि नैक्सट टाइम साढ़े तो होना गलती दोबारा कभी भी नहीं होएगी। और गलतियां बहुत तरीके की हो सकती है, साढ़े हाथों कोई चीज़ टुट जानी, कच टुट गया, किसी का खिलौना टुट गया, किसी की कोई चीज़ खराब हो गई साढ़े तो, या फिर सब्जी बनाते बनाते साढ़े तो शायद सब्जी सड़ गई यानी कि जल गई। यह चीज़ा तो बहुत छोटिया ने, असल च एक गलती बहुत वड्डी मनी जाती है कि किसी का दिल तोड़ देना, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे अपने हाण का है, या फिर अपने तो भी उम्र च बहुत वड्डा है। जेकर असी यह गलती करते हैं ना तो वह सामने वाले के दिल में छन्नी छन्नी कर देती है। तो इसे करके कोशिश करो कि कच भावें तोड़ दो लेकिन कभी किसी का दिल ना तोड़ो और अपनी गलतियां तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। सो आज दे दिन यही कोट लेके चलते हैं और वादे आगे क्योंकि गाने तो टाइम हो चुके हैं शुरू। सो जानी दी आवाज़ विच क्या होता है।

लस्सी दे ग्लास तो भी वड्डी वड्डी गल्ला पूरा पंजाब सुनदा है। इसलिए रेडियो महारानी तुहानु एक मौका देंदा है, पहुंचाओ अपने बिजनेस नु पंजाबी ऑडियंस तक। कॉल करो 9654896896 और चलवाओ अपनी बिजनेस एट ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना। और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

एक गिलास नींबू पानी बब मुशाए, इस अलावा होर सानू कुछ नहीं चाहिदा, ना कॉफी एंड ना ही चाय, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बस इन्हें ही चीजों का तुसी रखना है ध्यान, और कभी भी कोई भी तुहाडे घर आ रहा है उसकी खातरदारी करने विच कभी भी अपने पैर पिछे ना करो। इन्नी ज्यादा गर्मी है और मैनु लग रहा है कि बस लास्ट टाइम वांगू फिर ना नींबू ही सब तो महंगे होंगे। वैसे यह सवाल मेरे जहन च हमेशा आता है, तुहाडे कोल भी जहन है भाई, उहदे विच भी सवाल आंदे होंगे, तो डोंट वरी भेज दिया करो, रिप्लाई करांगे जरूर 9654896896 से। मैं सिर्फ पंजाबी शाला दे आंसर ही नहीं भेजी दे, इसते होर भी गल्लां बातां जरूर करी दियां ने, लाइक गाणे दी फरमाइश ते तुसी जरूर ही भेज दिओ, तो मैनूं पता है, लेकिन इहदे नाल नाल अपने दिल दी गल्लां भी तुसी शेयर कर सकदे हो। की पता जदों मैं बयां करां ते तुहाडा कोई अपना चाहण वाला जदों सुन ले ते बस जिहड़ियां दूरियां तुहाडे अंदर पैदा हो चुकियां ने उह दूरियां ऑन द स्पॉट खत्म हो जाण। सो वेलकम बैक इन केड़ा रंग पंजाब दा। सो मिस पंजाब उन्होंने दसन लगी है, जो भी है मौसम सर्द या गर्म बहुत ज्यादा होता है, तो जिस चीज की सानू बहुत ज्यादा लोड़ होती है वही चीज क्यों महंगी हो जाती है, ऐ मैनू समझ नहीं आया। ठीक है नींबू पानी जरूरी है पीना, समझा करो, तुहानू चीज सस्ती करनी चाहिए है, तुसी महंगी करन लगे हो। मैं नहीं समझा सकती, देसी करके थानू कहनी है कि तुसी भी नाल जुड़ो, क्योंकि इकट्ठे मिलकर जो प्रयत्न करते हैं ना किसी चीज का, भाई यूनियन स्ट्रेंथ वाला किसान दाड़ा लकड़ियां का गुच्छा सी ना, वह भी तोड़ सकते हैं जेकर इकट्ठे मिलकर किसी सही वास्ते गल करांगे। सो फाइनली हुण दसांगे तुहानू कि अज जिहड़ी गल्लां कीतियां ने ना उहनां दे विच ही, बिल्कुल जी उहनां दे विच ही साडी पंजाबी शाला दा अज वर्ड छुपिया होया, लेकिन ओह वर्ड हैगी सी दसांगे बट हुणे नहीं, क्योंकि हुणे टाइम है गाणे दा। सो हस्तिंदर इहनां दे नाल ने गुलेज़ अख्तर और गाणे दा नाम है लागदार तुहाडे सारिआं लई। उस तों बाद पंजाबी शाला दे वर्ड दी अनाउंसमेंट, सो अपने अपने फोन नूं हुण रेडी कर लो और आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सवाल तुहाडे सामने बहुत जल्द पेश होण वाला है।

कहते हैं ना जस नाम तस गुण, गहना भी बिल्कुल वैसी ही थी। सजना संवरना उसे बहुत पसंद था। आज सुबह से ही बेहद खुश थी। हल सुबह उठकर घर के सारे काम निपटा, उसने सतरंगी लहंगा चुनरी पहनी और मैचिंग की ढेर सारी चूड़ियां, बिंदी और पायल पहनकर आईने में खुद को निहार रही थी। तभी पीछे से उसका पति सरजू आया और बोला, ए गहना, आज कोई दिवाली है जो इतना सज सवर कर तैयार हो रही है? तो गहना बोली, अरे भूल गए क्या, आज मतदान करने जाना है ना। हमारी मनपसंद सरकार बनेगी तो देश समाज तरक्की करेगा, सबको रोजगार मिलेंगे, हर घर में भरपूर अन्न राशन होगा, तो हर दिन दिवाली होगी कि नहीं। अब चलिए ना, देर न करिए, जल्दी जाकर वोट देकर आते हैं। तू तो बड़ी समझदार है गहना। सरजू अपनी पत्नी गहना की ओर देख मुस्कुराता है और अपने भाग्य पर गर्व करता है। फिर दोनों चल पड़ते हैं मतदान केंद्र वोट देने के लिए। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन कितनी बड़ी सीख देकर के जाती है। आई एम श्योर कि आपने सीख को जरूर नोट कर लिया होगा और आप भी वोटिंग डे पर अपना कीमती वोट जरूर कास्ट करेंगे। ये कहानी हमें लिख भेजी है अंजलि खेर जी ने। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। सो इस बड़ी सीख को केवल नोट करके नहीं रखना है, बल्कि एक्शन भी लेना है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।

चंगे बंदे दी रीस ते गरीब दी असीस ए कदे भी गलत नहीं हुंदी। हेलो एंड वेलकम इन खड़ा रंग पंजाब दा सो मिस पंजाब बंदी। 3 घंटे वाली इस जर्नी विच तुहाडे सारां दा एक बार फिर स्वागत है। और तुहानू पता है कि भई जिहड़े असीं पंजाबी शब्दां दा वर्ड पुछिया सी बहुत सारे तो मीनिंग्स आने शुरू हो गए ने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैनू हुण जल्दी हो रही है, मैं फटाक करके अनाउंस करदा करांगी जरूर। समय आनते हर एक चीज कहते ना कि समय आनते ही करनी चाहिए है। सो फिलहाल हाले गल्ला बातों का टाइम है। और एक कड़ा गाना तुसी हुणे सुनिया सी, लौंग लाची मूवी दा गाना है, अमरदीप सिंह एमी विर्क ने गाना गाया नीरू बाजवा दे नाल ने। इस मूवी की स्टोरी ना किसी नूं समझ आई नहीं सी, ए की सी समझ नहीं आया, कुछ पले नहीं पिया। हाँ ऐदा है भाई जदों मूवी वेखी तां सानू बड़ा चा कि गाना इन्ना हिट हो गया सी एदा। मन्नत नूर दे नाल एमी विर्क दी आवाज सी, लेकिन सानू मूवी विच नजर आ रहे सी अमरदीप सिंह एंड नीरू बाजवा। इन्हें दोनों दी केमिस्ट्री, इन्हें दोनों दी स्टोरी की है कुछ भी पले नहीं पिया किसी नूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एड़ा कला एक गाना सी ना, एने बहुत ज्यादा सारे पासे धमाल मचाती। इसी करके लौंग लाची 2 भी बहुत जल्द बनाया गया। मन्नत नूर वास्ते डायरेक्टर गुरमीत सिंह कहंदे ने सानू पूरा भरोसा सी कि यह गाना जो लिखा गया है बहुत ज्यादा हिट होने वाला है। कहंदे इंट्यूशंस अंदरों होनी शुरू हो जाती है और एक आर्टिस्ट नू पता है वो की करन जा रहा है, एक डायरेक्टर नू पता है कि वो की बनान जा रहा है, लिरिसिस्ट नू पता है कि उन्हें जो लिखता बस हुण ते वो सत्वें आसमान तक गल जानी है। सेम ऐदा ही होया कि इस गाने दे जिन्ने भी आले दुआले कलाकार सी सारे नू पता सी कि यह गाना सुपर डुपर हो जाएगा, और रियली होया। उस तो बाद दूजे वारी और जदों आंदा ना कि बई हुण इहदा सैकेंड पार्ट बनाया जाए क्योंकि पार्ट 1 नू बहुत ज़्यादा पसंद किया गया एंड ऑडियंस बहुत बेसब्री नाल लौंग लाची 2 का इंतजार कर रही थी, बट लौंग लाची 2 ने इन्नी ज़्यादा तारीफां नहीं लुटियां, कितना कितने कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बड़ो आर्टिस्ट वालों नहीं, शायद साड़ी चॉइस विच ही कुछ ना कुछ कमी है। फिलहाल कुछ गाने उस तो बाद पंजाबी शाला दे साडे वर्ड अनाउंसमेंट दा टाइम आने वाला है।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

लस्सी दे ग्लास तो भी वड्डी वड्डी गल्ला पूरा पंजाब सुनदा है। इस लई रेडियो महारानी तुहानु एक मौका देंदा है, पहुंचाओ अपने बिजनेस नु पंजाबी ऑडियंस तक। कॉल करो 9654896896 और चलवाओ अपनी बिजनेस एट ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM ते।

0: सड़क पे चलते समय सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचिए। आपका कहीं जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है आपका घर सही सलामत पहुंचना।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बर्थडे वाले बल्ले बल्ले ते व्याह वाले शावा शावा
3: ते रेडियो महारानी तो अनु दसेगा आज किदी पार्टी दा केक खावा।
4: ध्यान दे, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM। कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके
3: छूकर मेरे मन को किया तूने ललनाना।
4: तुम मेरी कितनी भी तारीफ कर लो पर पकौड़े नहीं बनेंगे, क्योंकि बेसन नहीं है घर में और इतनी बारिश में तुम तो स्टोर जाने से रहे।
5: अरे बाबा तुम नाराज क्यों होती हो, तुम बस सामान की लिस्ट बनाओ बाकी मुझ पे छोड़ दो।
6: ड्राई फ्रूट से लेके दालों तक, कॉस्मेटिक से लेके मसालों तक, सब कुछ मिलेगा एक ही स्टोर पे, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में।
7: स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंटल स्टोर नियर विमेंस कॉलेज NIT 5 फरीदाबाद 121001।

सो वेलकम बैक अगेन इन हेल्दी एंड हैप्पी आर जर्नी। भाई जेकर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि हाय साडा इत्थे भी फैट आ रहा है, उस पासे भी साडा फैट, कोई ड्रेस साडे ते जच नहीं रही, पार्टी ते जाना होंदा ते सौ वारी सोचना होंदा कि असीं पाईए की। वह गल वखरी है कि वार्डरोब भावें साडी कपड़िआं दे नाल भरी होवे, लेकिन फिलहाल हले आपां अवले गम नाल भरे होए आ कि असीं पाणा की है, क्योंकि असीं उहदे विच ज्यादा वधिया नहीं लगांगे। सो अपने लुक नूं भी जेकर तुसीं बहुत ज्यादा वधिया रखना चाहुंदे हो ते उहदे वास्ते अपनी सेहत दा ध्यान रखना सब तों ज्यादा जरूरी है। और इस विचकार अज आपां दसन वाले हाँ मखाने दे कुछ फायदे, जो अगर तुसीं खाओगे तो तुहानूं ही होणगे, और जेकर सेम इही सलाह तुसीं किसी होर नूं भी दिंदे हो ते फायदा उहनां नूं भी होएगा। मखाने जिथे सानू बहुत सारी बीमारियां तो बचाते हैं, उहदे नाल नाल सानू बहुत ज्यादा हैल्दी भी रखते हैं। तुहानू पता है कि मखाने खाना साडी हैल्थ लई इन्ना ज्यादा बेनीफिशियल है, क्योंकि यह ड्राई फ्रूट छोटा जा हल्का फुल्का लेकिन बहुत वड्डी वड्डी समस्यावां तो सानू बचाण दा काम करता है। तो चलो जानते हैं कि बई की इहदे विच फायदा है। सब तो पहला मेन गल कि पोषक तत्वों नाल भरपूर मखाने, क्योंकि इस ड्राई फ्रूट विच मैगनीशियम, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन और जिंक वर्गे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा विच पाए जाते हैं। इहदे नाल नाल बहुत सारी बीमारियां लई भी यह मखाने खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि मखाने दे विच ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत घट होंदा है। इहदे विच सोडियम मैगनीशियम की मात्रा भी बहुत ही ज्यादा घट होंदी है, और डायबिटीज के पेशेंट्स लई यह मखाने एक वरदान का काम करते हैं। शुगर लैवल नूं इहदे नाल कंट्रोल किया जा सकता है। वेट लॉस विच भी मखाने बहुत ज्यादा वधिया खाने, क्योंकि इहदे विच कैलरी की मात्रा बहुत घट होंदी है और इहदे नाल मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है। जेकर तुहानूं लगता है कि भई जिद्दां ही वैदर चेंज होंदा है असीं बहुत जल्दी इनफेक्ट होंदे आ, तो अपनी इम्यूनिटी नूं बूस्ट करन लई मखाने अपनी डाइट विच जरूर ऐड करो। गठिया दे रोग तो भी जेकर तुसीं छुटकारा पाना चाहते हो तो मखाने जरूर खाओ, क्योंकि यह हड्डियां और मसल्स नूं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है इंसान नूं, क्योंकि अजकल की जिहड़ी लाइफ है ना उहदे विच असीं बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस नाल भरे हुए हैं। जेकर अपने आप नूं इहो जिही प्रॉब्लम्स तों बचाना है तो अपनी डाइट विच मखाने का इस्तेमाल करना अज तों ही शुरू कर दो, क्योंकि इहदे नाल मेंटल हेल्थ नूं बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि मखाने बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैकिंग ऑप्शन बन सकता है। इसी करके मखाने नूं देसी घ्यो विच रोस्ट करके खाण नाल बस तुहाडे शाम दी टेंशन मुक जाणी कि असीं चाह नाल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स नाल खाना की है। ते अपनी डाइट विच मखाने जरूर ऐड करो और लवो इहदे फायदे ही फायदे। एंड सुंदर ओ रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: और भाई की चलदा
1: ले, तेनु पता ही नहीं रेडियो महारानी दे खिड़िया रंग पंजाब दा चलदा।

सबर एक एहो जही सवारी है जो अपने सवार नूं कदे भी गिरन नहीं दिंदी, ना किसे दे कदमा विच ते ना ही किसे दिया नजरां विच। हेलो एंड वेलकम इन खेड़ा रंग पंजाब दा लौंग लाची टू गाने तो बाद एक बार फिर थोड़े सारे दा वेलकम है। पंजाबी शाला दे मीनिंग वाल नूं हुण असीं जाण लगे हां। बहुत सारे आंसर्स मेरे को आ चुके ने, हुण तुहानूं दस दिए नवनीत एना ने मैनू पंजाब तो आंसर भेजे है। नवनीत थैंक यू सो मच। नवनीत जो कि टीचर हैगी है, गवर्नमेंट टीचर, और वह कहती हैं कि भाई ज़्यादा अलाउड नहीं है सानू फोन सुनना, लेकिन फिर भी इन्हों ने पंजाबी शाला के टाइम में जरूर सवाल पूछ के सानू रिप्लाई किया है। नवनीत रियली थैंक यू सो मच। एंड नवनीत जो ने ना वो थिएटर भी कर चुके हैं काफ़ी बार, कि नवनीत कौर दलजीत दोसांझ के नाल मूवीज़ में भी आ चुके हैं। एक आर्टिस्ट की बहुत ही मेहनत रही होंगी है, और नवनीत ने इंस्टा ते अपना चैनल स्टार्ट किया है और उससे सिर्फ और सिर्फ सानू हसाती है। नवनीत ने सानू यह जवाब दे के बस सानू ते फिर कहते रहना कि बाग बाग करता भाई। नवनीत रियली थैंक यू सो मच। और तुसी जो कि इंस्टाग्राम ते थोड़ी इंस्टाग्राम फैमिली यानी कि असी सारे उन्होंने तुम इन्ना ज़्यादा हसाते हो, तुम्हें पता कि हसाना सब तो औखा काम है, बिल्कुल तुम बरखूबी यह चीज़ जानते हो। मैं लिसनर्स नूं भी दसना चाहनी हाँ, कहिंदे ने ना कि भाई साडे कोल किसी नूं देण लई कुछ है नहीं, वह बहुत दूर ने, या फिर असीं बहुत दूरां से किद्दां दईए। हंस के गल कर लिया करो, अपने चेहरे ते मुस्कुराहट लियाया करो, तुहानूं देख के अगला भी खुश हो जाएगा, उहदे भी चेहरे ते मुस्कान आ जाएगी, ते बस फिर सानूं बहुत खुशी मिलेगी और लगेगा कि हाँ बेशक असीं पैसा तो नहीं दित्ता, धन दौलत नहीं दित्ती, लेकिन हाँ उहदे चेहरे नूं एक मुस्कान देती। सो साडी जिहड़ी हुण नवनीत उन्होंने सानूं आंसर किया है, लारे लान की लोड़ नहीं। एक्चुअली नवनीत नू मैं अपने स्टूडियो विच इनवाइट किया है, बहुत जल्द असी मिलांगे, और नवनीत नू मैं कह सी नवनीत प्लीज़ मैनू लारे ना लायो, जरूर आयो। एंड लारे लान की लोड़ नहीं दा मतलब होंदा है कि सानू ना बहानेबाजी ना करियो, पक्का वादा करियो, प्रोमिस करियो, जिथे भी जाना, जिथे भी मिलना, जिथे भी कुछ खाना पीना है। सो लारे होंदा है कि भाई खामा खा की गल नहीं कर जानी, जो भी गल है पक्की करनी है, एंड प्रोमिस कभी भी ब्रेक नहीं करना। सो मैं उम्मीद है कि तुहानू आज दा पंजाबी शाला दा सेंटेंस बहुत वधिया लगे होएगा। होर भी गल्लां बातां सांझी करांगे, बस उस तो पहला कुछ गाने थोड़े सारे लई।

0: आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास रेडियो महारानी है।
2: Point 6 FM.

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: से कम उम्र वाले लोग वाहन ना चलाएं, पहले जाकर अपना लाइसेंस बनवाएं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई।
1: मैं पांच नदियों की बेटी आज आपको ये सोने की कुल्हाड़ी देती हूँ।
0: लेकिन ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, ये लो चांदी की कुल्हाड़ी।
0: ये भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो।
2: और फाड़ला चुप करके आया वड्डा, मेरी नहीं है। पूरे पिंड नू पंजाबी गाना तो लेके पंजाबी खान तक दी रेसिपी दसनी है। बॉलीवुड मूवी दा व्यू रिव्यू करना है। पंजाब दे वक्रे वक्रे पहनावे दी हिस्ट्री दसनी है। ते पंजाबी गाने ते बर्थडे दे एनिवर्सरी वाले नू नचोना है। कल्ला एक तेरी कुल्हाड़ी लभन दा टाइम नहीं है मेरे कोल।
0: माफ कर दो देवी जी, पर तुसी हो कौन?
3: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।
4: आरजे सुखदीप डायरेक्ट पंजाब दियां गलियां चो खिड़िया रंग पंजाब दा विच Monday to Friday, only on Radio Maharani 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM। कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके
3: चाय सिर्फ जुबान नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल के हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, नाथी टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके खोल जाती है।
5: यारों का 60 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 6 बजे से देर रात तक, नाथी टी स्टॉल, नाथी चौक, NIT1, फरीदाबाद।

बस सीरियसली जिहड़ी तुहाडी गल्लां ने ना ओह तां मेरियां पसंद बणी गईयां ने, क्योंकि तुसीं जो आंसर्स मैनूं भेजे ने मेरे वट्सएप नंबर ते, बहुत ही वधिया इन्नी प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर कीतियां ने, जो कि मैनूं पढ़ पढ़ के ना हासा आ रहा है कि इहो जिही गलतियां वी बच्चा जदों करदा ना ते सीरियसली तां ही आख्या जांदा कि तू बच्चा ही है। और बच्चे तां फिर कहिंदे ने ना कि गलतियां दा पुतला हुंदा है, गलतियां जेकर न्याणा नहीं करेगा तो फिर स्याणा करेगा, ताही तो आख्या जाता भाई तू सियाणा है और तेनू गलती का हक है ही नहीं। और न्याणे लई माफी है गलतियां दी ढेर सारी, एंड नेक्स्ट टाइम लई नसीहत है कि भाई मेरे को एक बहुत प्यारा जा जवाब आया सुप्रिया, जो कि कह रहे हैं कि मेरे तो भी एक गलती हो गई और वो गलती है हो गई सी। सुप्रिया कहनी है कि जो मैं छोटी सी तो उन्होंने घरे व्याह रखा हुआ, एंड उन्होंने चाचे का व्याह सी, ए बहुत छोटी सी, सारा ही इंतजाम हलवाइया वालों घरे किया जा रहा है, घरे ही भाजी बन रही जिस गुड़ पा रहे शक्कर पा रहे मठी लड्डू मटरी सब रेडी हो रहा। कहिंदे मेरे तो बस गलती ऐ हुई कि लागे बहुत सारे नमक दी थैलियां भी सी और उत्थे लागे बुरा खंड वाली थैलियां भी सी। फिलहाल होया इदा कि इन्हां न्याणियां ने सारे ने व्याहां वाले घर च खूब खप पाई, पोलीथिन चुक के अपने वालों कहिंदे कि भाई असी सोचते सी कि वड्डियां दी हैल्प हो जाए, तां करके असी सारी पोलीथिनां नूं इक पासे इकट्ठी करतीआं। हलवाइयां नूं नहीं पता चलिया कि बई ऐ नमक भी हो सकता है, उन्होंने लग्या कि मिठा ही है। उन्होंने हार के जदों अपनी भाजी बनानी शुरू की ना तो सीरियसली उन्होंने भाजी बन गई, क्योंकि सारी भाजी में जी मठी मटरी सी तो चलो नमकीन ठीक है, लेकिन गुड़ भारे या शक्कर भारे और फिर नमक पारे बन चुके सी। भाई छोटे ने जो गलती की सो की, लेकिन वड्या तो गलती यह होगी कि उन्होंने चेक ही नहीं किया, स्वाद नहीं वेखिया, उन्होंने सोचा कि पहला असी वंड दईए और भी टेस्टी बने होएगा, अपने घर के हलवाई ने तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। चंद मिनटा लिए होया भुल गए सी कि भाई न्याणे भी तो अपने घर दे ने ते गलती किदां नहीं होएगी। उन्होंने आले दुआले सारे पासे भाजियां वंडनी शुरू करतीआं। उस तो बाद की होया दसांगे जरूर, लेकिन कुछ गाणियां तो बाद।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: Point 6 FM. Good check.

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ छक्के

0: सारा शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से जानता है।
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूँ कौन।
2: मुंडा भेजना गवा के कोहे नूर वर्गा, हो जामा पहले तोड़ वाली दे सरूर वर्गा।

वैसे असीं अपने इस शरीर रूपी पिंजरे नूं तां कैद कर सकदे हां, लेकिन ऐ मन रूपी परिंदे नूं किद्दां कैद करिए जो कि कदी कैद हो नहीं सकता। मन करदा है मैं इत्थे चली जावां, मन करदा मैं खावां, मन करदा मैं ओ पावां, मन करदा बस मैं हसी जावां, मन करदा कि मेरे कोल बहुत कुछ होवे ते बस सिर्फ और सिर्फ ऐश। लेकिन तुहानू दस दिए कि भी जिहड़ा मन है ना, इहदे समझाया समझ हैगी है ते इहदे जित्तिया ही जित्त हैगी है, हारिया हार ही मिलनी है। ते इस करके अपने मन नूं थोड़ा जिहा अपने कंट्रोल च रखदे हां। जेकर ऐवला परिंदा कंट्रोल च आ जाएगा ना तो फिर सब कुछ सही चलता चला जाएगा। सो वेलकम बैक अगेन इन खेड़ा रंग पंजाब दा। और आज वैसे मेरा जड़ा है परिंदा रूपी मन है वो कहता है कि कुछ नवी चीज़ बारे आज गल होए। सो आज असी पंजाब दे एक बहुत ही वधिया जे ट्रेंड बारे गल करन लग गए हां। भई जिहदी शुरुआत जेकर आपां कहीए ते वो वर्ड है कलिचड़ी। सो जेकर तुसी ए वर्ड पहली बारी सुनिया है तां वधिया है जी, क्योंकि तुहानू इस वर्ड बारे बहुत कुछ नॉलेज मिलन वाली है। लेकिन जेकर तुहानू ए वर्ड पहला भी सुनन चाह चुके हैं तो फिर देरी क्यों भाई। मेरी गल्ला बातें खत्म होने तो पहला पहला और गाने तो भी पहला पहला तुसी सानू दस सकते हो साडे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 ते कि कलीचड़ी दा की मतलब होंदा है। हाँ तुसी कहोगे कि पंजाबी शाला फिर शुरू हो गई। पंजाबी शाला तो चलती रहती है क्योंकि खेड़ा रंग पंजाब दा दी शाला है, कभी भी शुरू हो जाती है। और फिलहाल यह अपने वस की गल कर सकते हैं, जिते कंट्रोल है उत्थे चलाई सकते हैं ना। फिलहाल कलीचड़ी जो है ना वह विआहां शादियां दे रिवाज विच काम आती है। लेकिन यह की होंदी है, किद्दां दी दिखदी है, इहदा की यूज हुंदा है, इह खाण वाली चीज है कि या पाण वाली है, इहनां सब बारे गल्लां जरूर सांझी करांगे। बट सो गाने सुनदे हां, उस तों बाद करदे हां कलीचड़ी बारे बहुत खास गल्लां, क्योंकि इह कलीचड़ी जिहड़ा है ना इह भी एक बहुत ही खास रिश्ता जोड़दी है दो रूहां विच। लेकिन रूहां कीड़ियां हुंदियां ने दसांगे जरूर, बट फिलहाल मेरी गल्लां तों छोटा जिहा ब्रेक।

भाई अपनी लाइफ तो ना सानू कदी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपनी जिंदगी तो सवाल जवाब कट करने चाहिए ने, की पता कोई दूजा साड़ी जिंदगी नू अपना सपना समझदा होवे। हेलो एंड वेलकम इन खड़ा रंग पंजाब दा। और वैसे आज गल हो रही है साड़े सिटी द फैशन कलीचड़ी बारे। तुहानू पता दोस्तों कलीचड़ी की हुंदी है? कलीचड़ी जिहड़ी है ना ओह जीजे यानी कि मुंडे जदों व्याहे चले जांदे ने ते जीजे बन जांदे ने। ओबवियसली इहो जिहे रिश्ते जिहड़े ने ना ओह बहुत चंगे लगदे ने क्योंकि जीजे सालियां वाले रिश्ते नूं ते छेड़े ही बहुत जांदा है। लेकिन इस विचकार कुछ इदां है कि भी जदों चलो कुड़ी दा व्याह हो गया, कुड़ी अपने सहुरे घर चली गई, उस तों बाद नैक्सट डे जां फिर जिहदा घर थोड़ा ज़्यादा दूर है तो फिर सेम डे पग फेर दी रस्म भी कर लैंदे हुंदे ने, जिहनूं पंजाबी विच फेरा पाउणा कहिंदे ने। उस फेरे पाउण वाले विच भई जिहड़ा जीजा ना ओह अपनी सालियां दे लई कलीचड़ी लै के आंदा है। और तुहानूं पता है कि जिहड़ी एक ओरिजिनल साली यानी कि रियल साली साहिबा हुंदियां ना उहनां नूं डायमंड दी या फिर गोल्ड दी कलीचड़ी पाई जांदी है यानी कि अंगूठी पाई जांदी है। मैं इन्ना ज़्यादा गल नूं घुमाता, मैं सोच रही सी तुसीं कहिंदे होवोगे कि भई कलीचड़ी जीजा लिआंदा है साली पाउंदी है, बट कलीचड़ी कहिड़ी ड्रैस है? सो कलीचड़ी एक रिंग हुंदी है। और रिश्ते विच साडियां जिन्नियां भी होर कज़न सिस्टर्स आईआं होईआं ने ना, जीजा जी उहनां सारिआं लई कलीचड़ियाँ लेके आते हैं, वो बाकी चांदी दी होंदियां ने। हाँ वो गल वक्री है कि जिहड़ी रियल साली साहिबा ना इसे करके उहदा ते बहुत प्रॉफिट होंदा है क्योंकि उहनूं तो फिर गोल्ड या फिर डायमंड की कलीचड़ी मिल जाती है तो बहजा बहजा हो जाती है। बट अफसोस उन्होंने भैणा लई जिन्हां दी कोई होर भैण ही नहीं। सो यह कलीचड़ी का रिवाज है, मतलब रिवाज जिहड़े पंजाब दे बने हुए ने वो देखो कितना सोच के बनाए गए ने। भी जीजा और साली का भी बड़ा पाक पवित्र रिश्ता होंदा है और इसे करके अगले दिन भी वो रस्म भी अदा की जाती है जो रस्मां विआह वाले टाइम रह जाती है। यानी कि विआह वाले टाइम ना भी जुत्ती छुपाई तो हक होंदा ना सालियां का, लेकिन कई बार साढ़े तो छिन लिता जाता है। भई मुंडा या मुंडे की भैणा कर दियाँ की ने इन्नी ज़्यादा चलाकी कि कार च बैठे ने निकले ने बाहर तो जुत्तियाँ कार चला के जुत्तियों को लॉक करता, फिर साली साहिबा की करन। इस करके साड़ी ऐड़ी रीत ऐ रसम रह जाती है ना वो फिर पग फेर वाले दिन पूरी करी दी है। बई कलीचड़ी जड़ी है ना वो तो चलो असं ले ही लवेंगे, लेकिन हुण जीजा जी तुहानू सहुरे घरों थोड़े घर ताई जान दवांगे जदों सानू तुसीं जुत्ती लुकाई दा भी सगन दे दोगे। इहो जिहे गल्लां बातां जिहड़ियां बहुत ही यादगार हो जांदियां ने और बहुत सारे रिश्तों आपस में जोड़दियां ने। सो अपनी गल्लां तों लैंदे आ ब्रेक, सुणदे आ कुछ गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी

0: बनाना।
1: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेट्रो फ्लैशबैक,
1: रेट्रो फ्लैशबैक।
2: दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
3: कहानी की शुरुआत में ठाकुर नाम का रिटायर पुलिस ऑफिसर जय और वीरू नाम के दो चोरों को जेल से छुड़वा कर अपने गांव रामगढ़ बुलवाता है।
4: तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो।
5: अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे।
6: तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया
7: पार्टनर, अब बोल ही दिया तो देख।
3: रामगढ़ तक पहुँचने के लिए टांगा चलाने वाली बसंती उन दोनों की मदद करती है।
8: हाँ बाबू जी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़ कहाँ जाना है बोलो? टांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्रम से चल दिए। यहाँ तो बसंती का टांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो।
3: जिसकी वजह से वीरू बसंती को पसंद करने लगता है।
8: अरे यूके, तुम यहाँ कैसे?
5: यूके यूही बोलो, कौन सा आम तोड़ना है?
8: जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मार के तोड़ सकते हो?
5: ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ।
8: तुम तो बड़े निशान के होते
7: हो। जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये।
3: गांव पहुंचकर दोनों ठाकुर की तिजोरी को लूटने का सोचते हैं, पर चोरी से पहले ही उन्हें पता चलता है कि कैसे गब्बर नाम के डाकू ने पूरे गाँव का जीना मुश्किल कर रखा है।
9: कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
10: पूरे 50,000।
9: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
3: और उसे ही पकड़ने के लिए ठाकुर को जय और वीरू की मदद चाहिए, जिसके लिए उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि उन्हें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जय और वीरू मान जाते हैं और होली वाले दिन डाकुओं के आने पर उन पर हमला कर देते हैं।
10: गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है।
3: पर इस लड़ाई के दौरान जय देखता है कि ठाकुर ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे गांव वालों की जान जा सकती थी। जिसके बाद सबको एक सच्चाई का पता चलता है कि जब पुलिस ऑफिसर ठाकुर ने गब्बर को पकड़ने की कोशिश की थी, तब गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे और उसके पूरे परिवार को भी जान से मार दिया था।
11: ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर।
3: इसलिए ठाकुर रिटायर होने के बाद भी गब्बर को पकड़ना चाहता था, पर दोनों हाथ ना होने की वजह से वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता था। ठाकुर की कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं।
12: सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है।
3: इस लड़ाई में वीरू अपने सबसे अच्छे दोस्त जय को हमेशा के लिए खो देता है।

0: पर जिंदगी काटने के लिए उसे बसंती का साथ मिल जाता है।
1: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
0: रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म शोले के 48 साल।

0: आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास रेडियो महारानी है।
2: Natural night. Do you feel alright? Want a natural night?

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं बिजनेस मंत्र। बिजनेस मंत्र।
1: आई एम संजीव अग्रवाल, आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल कंटेनर्स एंड स्टील ड्रम्स। अगर आप बॉर्न एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर जज्बा है मुझे कुछ करना है, देन यस यू कैन गो विद द स्टार्टअप। बिकॉज सब जा रहे हैं एज ए स्टार्टअप, हमें भी जाना चाहिए। नहीं, एंटरप्रेन्योर्स बनते नहीं है, पैदा होते हैं। आपके अंदर जज्बा है, आप कर लोगे, तो आपको फिर स्टार्टअप क्या, कुछ भी करो, मतलब यू रियली वांट टू डू, तो आपके अंदर से आपको बैठने नहीं देगा, राइट? और आपके अंदर एक रीजन होना चाहिए, क्यों, सबसे पहले क्यों। क्यों मीन्स कि मुझे स्टार्टअप क्यों करना है, इसे मतलब फॉर मुझे प्रूफ करना है आई कैन डू इट, मुझे पैसे कमाने हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लें, फंड्स आ जाएंगे, नहीं चला देखेंगे। सो इट इज़ योर कॉल, लाइक कुछ जगह खुद से होता है, डेस्टिनी इज ऑलवेज सपोर्टिव, यस, उसके बिना कुछ नहीं होना है। देखिए, डेस्टिनी इज लाइक योर ओल्ड कर्मास, योर प्रीवियस कर्मास, दैट गिव्स यू लक। करेंट कर्मास गिव यू स्ट्रेंथ, जिससे आप आगे बढ़ो। मैं तो मान के देता हूँ, किस्मत भी आप हाथ की लकीरों में अर्न करके लाए हैं, आप इस जन्म में करिए, आपको अगले जन्म में मिलेगा, इफ यू बिलीव इन टू दैट थ्योरी।

0: फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: Point 6 FM.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे नाचना है तो रेडियो महारानी 89.6 की धुन पे नाचना।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM। कुछ हटके
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
2: कुछ हटके।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: Point 6 FM.

0: फ्लैशबैक।
1: रेट्रो फ्लैशबैक।
2: हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
3: कहानी की शुरुआत में राजू नाम का लड़का सड़क पर गाने गाकर अपनी आमदनी करता दिखाया जाता है, पर एक रात राजू को सड़क किनारे एक घायल आदमी मिलता है जो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। इसलिए राजू खुद ही उसका इलाज करके सुबह तक जिंदा रहने में उसकी मदद करता है, पर सुबह होते ही वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। कई दिनों बाद कुछ डकैत राजू को गलती से पुलिस का आदमी समझकर मारने के लिए अपने अड्डे पर ले आते हैं।
4: लेकिन लगता पुलिस वाला ही है।
5: पुलिस भी हमें पकड़ने के लिए नए नए रास्ते निकालती है। गए साले कोड़ी भेजा था और अब एक बहरूपिया आया है।
4: कौन है रे तू? कहाँ का रहने वाला है?
3: जहाँ वही घायल आदमी मिलता है जो उन सब डाकुओं का सरदार निकलता है, क्योंकि राजू ने सरदार की जान बचाई थी, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ही रहने के लिए मना लेते हैं। राजू लुटेरों के बीच रहकर भी लूटपाट का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि गाना गाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है।
2: मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम।
3: एक लूट के दौरान राका नाम का लुटेरा कुछ मासूम लोगों को मार देता है, जिससे नाराज होकर राजू पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है।
6: माफ कीजिए, नमस्ते का जवाब इस तरह नहीं, इस तरह देते हैं जी।
5: पुलिस वाले की नमस्ते का
6: सवाल है? इस बात का तो फैसला हो चुका है जी। सरदार जी ने और उनकी बेटी ने मेरी गंगा जी की कसम का विश्वास भी कर लिया है जी।
3: ताकि राका को अरेस्ट किया जा सके, पर पुलिस सभी डाकुओं का एनकाउंटर करने लगती है। अपने डाकू साथियों को मरता देखकर राजू इतना परेशान हो जाता है कि पुलिस के आने पर सारे लूटमार का इल्जाम खुद पर ले लेता है।
6: आप ही इंसाफ कीजिए, गंगा जी की कसम खाने के बाद कोई झूठ बोल सकता है? बोलिए बोलिए। देखा, गंगा जी कोई मामूली नदी नहीं है, शिव जी की जटा से निकलती है।
3: उसको ऐसा करता देखकर सभी लुटेरे अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस उन्हें जान से मारने की बजाय सुधार गृह में डाल देती है, और राजू का सबको सही रास्ते पर लाने का मकसद पूरा हो जाता है।
2: अब लौट चले।
3: रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के 63 साल।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: रेट्रो फ्लैशबैक,
1: रेट्रो फ्लैशबैक।
2: कहानी की शुरुआत में ठाकुर नाम का रिटायर पुलिस ऑफिसर जय और वीरू नाम के दो चोरों को जेल से छुड़वा कर अपने गांव रामगढ़ बुलवाता है।
3: तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो।
4: अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे।
5: मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया।

0: गोली मार कर तोड़ सकते हो?
1: ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ।
0: तुम तो बड़े निशानचे लगते
2: हो। हां जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये।
3: गांव पहुंचकर दोनों ठाकुर की तिजोरी को लूटने का सोचते हैं, पर चोरी से पहले ही उन्हें पता चलता है कि कैसे गब्बर नाम के डाकू ने पूरे गांव का जीना मुश्किल कर रखा है।
4: कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
5: पूरे 50,000।
4: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
3: और उसे ही पकड़ने के लिए ठाकुर को जय और वीरू की मदद चाहिए, जिसके लिए उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि उन्हें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जय और वीरू मान जाते हैं और होली वाले दिन डाकुओं के आने पर उन पर हमला कर देते हैं।
5: गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है।
3: पर इस लड़ाई के दौरान जय देखता है कि ठाकुर ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे गांव वालों की जान जा सकती थी। जिसके बाद सबको एक सच्चाई का पता चलता है कि जब पुलिस ऑफिसर ठाकुर ने गब्बर को पकड़ने की कोशिश की थी, तब गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे और उसके पूरे परिवार को भी जान से मार दिया था।
6: ये हाथ हमको दे दे ठाकुर।
7: नहीं,
6: ये हाथ हमको दे ठाकुर।
3: इसलिए ठाकुर रिटायर होने के बाद भी गब्बर को पकड़ना चाहता था, पर दोनों हाथ ना होने की वजह से वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता था। ठाकुर की कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं।
8: सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं।
3: इस लड़ाई में वीरू अपने सबसे अच्छे दोस्त जय को हमेशा के लिए खो देता है।

0: पर जिंदगी काटने के लिए उसे बसंती का साथ मिल जाता है।
1: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
0: रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म शोले के 48 साल।